0: ये निर्गुण से सगुण बन आए, भक्तन के हितकारी प्रभु, भक्तन के हितकारी। दिस वी हैव ट्रांसलेटेड यस्टरडे, द
1: Tak tohle už jsme přeložili včera.
0: थर्ड
1: Teď dál.
0: आप

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: Om
1: zítra.
0: Shanti, Shanti, Shanti.

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One more.

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

भगवत ओम शांति शांति शांति श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म ओम शांति।

0: मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

0: Ahar, achar, and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
1: Ez a négy az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
1: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
1: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
1: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
1: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
1: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and then according to that, the thoughts comes.
1: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza a gondolataid.
0: You have to control your horse.
1: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
1: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
1: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
1: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
1: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
1: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
1: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
1: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
1: És nem tudjátok, mi ez.
0: We know the karma.
1: Tudjuk, mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
1: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
1: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
1: Hogyha a karmát és a kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
1: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
1: Különböző dolgok vannak.
0: So our acharya Triveda Kapila.
1: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
1: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
1: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
1: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
1: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi. Panditji.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tiéd
0: az. Bolo.
1: So.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन. दीप नारायण भगवान की जय सतगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं.
0: Now we don't know anything. We were only listening to your voice. अनुवाद करता हूँ.

0: We are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
0: And so let's go what he said about short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं.
0: वाइल मेकिंग द यज्ञ,
1: यज्ञात वेक्सुंग
0: सेरेमोनीज, वी विल हैव ए इजी एक्सेस टू गॉड.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है. अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है.
0: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन.
1: Életben सokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, फिर साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है. और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं, उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस,
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस,
1: वैदिक उस टू द मैन,
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र, एज आई टोल्ड बिफोर ही मेंशन्ड,
1: a vastu shastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam,
0: exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the yagya is like the mouth of the god.
1: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your

0: ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं। अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
0: द स्क्रिप्चर्स, द वेदास, उपनिषद एक्सेट्रा, देयर मंत्रास व्हिच इन्फ्लुएंसेस द देवास।
1: Iratok, védek, upanisádok, bantrái hatnak a dévekre.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
1: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures?
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A granthákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है। तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है।
0: सो such a opportunity, such a occasion, such a situation that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: A rizsika szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Szatgurudév jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Szatgurudév tanúja a mantrádnak.
2: Ek mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyanamulam gurur murti, puja mulam guru padam, mantra mulam gurur vakyam, moksha mulam guru kripa. Dhyan karne ke yogya guru ji ki pratima hai, guru ji ki murti hai. Dhyanamulam gurur murti, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिष्टनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हियर इन दिस हॉल एंड ऑल डियर भक्तास राउंड द वर्ल्ड हुज विद अस थ्रू आवर वेबकास्ट। वेलकम। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। इट वॉज द महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि सेरेमोनीज पूजास एंड वी हैव एस्टेब्लिश्ड हियर ब्यूटिफुल न्यू शिव टेम्पल। देयर वॉज अमावस्या। अमावस्या मीन्स द डार्क नाइट, डार्क मून इज ऑपोजिट टू द फुल मून। Moon is very powerful. Moon is a balancing principle for the earth. It's like antenna. So moon is growing and decreasing, increasing. Full moon to the dark moon to the full moon. Only one night the moonlight is not directly, because the same time rising sun and moon, so we can't see the moon. But the next day the moon shows its strength, and you will see every time when dark moon is that day or after one or two days,

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धरनाशकाय हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ज्यादा हो गए कुछ सम हो गया दस दस हो गया तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राणाक्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम जल स्नानम करिष्यामि श्रीगम गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि ओम श्रीनारायण गंगे जैमिनी जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जल स्नानम करिष्यामि इति जल स्नानम करिष्यामि। ओम

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम् पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम इति पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम सदाशिवाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरि ओम सदाशिवाय नमो नमः। साम सदाशिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजो पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। इदं मधु स्नानं करिष्यामि। शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्ल शशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओदो सदाशिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। साम्ब सदाशिवाय नमः। हरि ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पानी और हवे अब तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदाशिवाय नमः। साम

0: पिनाकहस्ताया सनातनाया यक्षस्वरूपाया जटाहराया देवाय दिगाय दिगंबराया तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी थलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्यमे दक्षिणां समर्पयामि साम सदाशिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते नलक्ये वस्त्रं समर्पयामि श्रीनारायण साम सदाशिवाय नमः।
2: बस
1: अब धतूर धतूर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतूर को स्मरण करके। हरि ओम धतूर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। बस त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम चढ़ाइए त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पचाए। Can you pass that thali to Swamiji?
0: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phala charu bhakshanam umasutam soka vinashakarakam namami vigneshwara pada pangajam siddhi buddhi saitaya sri gamganadhipataye namaha श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः।
1: सिंदूर भी लगा दीजिए।
0: सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया पपादिते देतुभ्यं वासदि प्रतिगृहताम।
1: थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक एक बिंद लगे थी बहुत।
0: हरियम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः।
1: समवन कैन प्ले द बेल।
0: ओम सांब सदा शिवाय नमः
1: ना अगरबत्ती

0: अच्छा,
1: और शंकर भगवान
0: की जय। अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको one leaf here and water. वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। some water. हरिः ओम्। कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: More water.
0: ओम प्राच्यै नमः। सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशे नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
1: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
0: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल रेड। ओम भौमाय नमः। भौमरेण भौमाय नमः। नाउ ग्रीन। बुम बुदाय नमः। ओम बुम्बुदाय नमः। ओ येलो। ओ ब्रिम्रेस्पतये नमः। नो व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः। नो ब्लैक सनी कलर।
1: देयर वाज अ डार्क फ्लावर देयर। या दिस वन। या
0: हां
1: थैंक यू।
0: ओम शमशनेश्वराय नमः। शमशनेश्वराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये या या। ओम राम राहवे नमः। ब्राउन
1: ब्राउन यस।
0: Oh, maybe that one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
1: Where is the vokai? Where is the
0: basma? There is a small katori. Where is that basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राण समग्नि अजायत। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राण समग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री डिफरेंट सेपरेट या ओके। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम धनंतरवे स्वाहा। ओह नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी। ओम प्रजापते स्वाहा। जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे आए
1: And where is this? Ali?

0: ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थदेवा सर्वतीर्थादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानय दिकसन ससत्व शोक सुभद्रिकाम काम्बिलवासिनीम स्वाहा, एहे ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ
0: द ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम स्थाणवे नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम प्रवराय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा, ओम सर्वविख्याताय नमः, ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा, ओम सर्वकराय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम जटिने नमः स्वाहा, ओम चर्मिणे नमः स्वाहा, ओम शिखंडिने नमः स्वाहा, ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः, ओम हरिणाख्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा, ओम निवित्ताय नमः स्वाहा, ओम नियताय नमः स्वाहा, ओम शाश्वताय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा, ओम खजराय नमः स्वाहा, ओम गोचराय नमः स्वाहा, ओम अर्दनाय नमः स्वाहा, अभिवाद्याय नमः स्वाहा, महाकर्मणे नमः स्वाहा, तपस्विने नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय नमः स्वाहा, ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम महारूपाय नमः स्वाहा, महाकायाय नमः स्वाहा, ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा, महायसे नमः स्वाहा, महात्मने नमः स्वाहा, सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा, विश्वरूपाय नमः स्वाहा, महाहणवे नमः स्वाहा, ओम लोकपालाय नमः स्वाहा, ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा, ओम प्रसादाय, ओम हरिगर्भे नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम महते नमः स्वाहा, ओम नियमाय नमः स्वाहा, नियमाश्रिताय नमः स्वाहा, ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा, ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा, ओम आदये नमः स्वाहा, ओम आदिकराय नमः स्वाहा, ओम निधये नमः स्वाहा, ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा, विशालाक्षाय नमः, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम शनये नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम ग्रहाय नमः स्वाहा, ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा, ओम वराय नमः स्वाहा, ओम अत्रये नमः स्वाहा, अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा, ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा, ओम अगनाय नमः स्वाहा, ओम महातपसे नमः स्वाहा, ओम घोरतपसे नमः स्वाहा।

नमः स्वाहा। परमाय मंत्राय नमः स्वाहा। सर्वभावकराय नमः स्वाहा। ओम हराय नमः स्वाहा। ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा। ओम धनुन्ये नमः स्वाहा। ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा। ओम कपालवते नमः स्वाहा। ओम असनये नमः स्वाहा। शतघ्निने नमः स्वाहा। ओम खंगिने नमः स्वाहा। पट्टिसिने नमः स्वाहा। आयुधिने नमः स्वाहा। महते नमः स्वाहा। सुवस्ताय नमः स्वाहा। सुरूपाय नमः स्वाहा। ओम तेजसे नमः। ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा। उष्णीषिणे नमः स्वाहा। शुभक्राय नमः स्वाहा। उद्ग्राय नमः स्वाहा। ओम विनताय नमः स्वाहा। ओम दीर्घाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा। सुतीर्थाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम मुन्नाय नमः। ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा। ओम गंधधारिणे नमः स्वाहा। ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा। ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा। ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा। ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा। नवस्थलाय नमः स्वाहा। त्रिजटिने नमः स्वाहा। चिरवाससे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम सेनापतये नमः। ओम विभवे नमः। ओम अहस्राय नमः। ओम नक्तसुराय नमः स्वाहा। ओम तिन्मगये नमः स्वाहा। ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा। शुभचर्षाय नमः स्वाहा। ओम गजग्ने नमः स्वाहा। ओम पाणिने नमः स्वाहा। ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा। ओम गुणकाराय नमः स्वाहा। सिंहादूलरूपाय नमः स्वाहा। आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः स्वाहा। कालयोगिने नमः स्वाहा। महानादाय नमः स्वाहा। ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा। ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा। ओम निशाचराय नमः स्वाहा। ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा। ओम भूतचारिणे नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम बहुभूताय नमः स्वाहा। ओम बहुधराय नमः स्वाहा। ओम सोनार्वे नमः स्वाहा। ओम अमिताय नमः स्वाहा। ओम गतये नमः स्वाहा। ओम नित्य प्रियाय नमः स्वाहा। नित्य नर्तनाय नमः स्वाहा। नर्तकाय नमः स्वाहा। सर्वलालसाय नमः स्वाहा। ओम घोराय नमः स्वाहा। ओम महातपसे नमः स्वाहा। ओम पाशाय नमः स्वाहा। ओम नित्याय नमः स्वाहा। ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा। ओम नवसे नमः स्वाहा। ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम व्यवसाय नमः स्वाहा। अंतरिद्याय नमः स्वाहा। ओम अतीन्द्राय नमः स्वाहा। अघर्णनाय नमः स्वाहा। ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा। यगने नमः स्वाहा। कामनाशकाय नमः स्वाहा। दक्षगपाहाय नमः स्वाहा। ओम सुसहाय नमः स्वाहा। मध्यमाय नमः स्वाहा। तेजपहारिणे नमः स्वाहा। बलग्ने नमः स्वाहा। मुदिताय नमः स्वाहा। अर्थानाय नमः स्वाहा। अजिताय नमः स्वाहा। अवराय नमः स्वाहा। गंभीरघोषय नमः स्वाहा। गंभीराय नमः स्वाहा। गंभीरबलहानाय नमः स्वाहा। न्यग्नोरूपधराय नमः स्वाहा। न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा। ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा। ओम विभवे नमः स्वाहा। श्रुतिक्षणदर्शनाय नमः स्वाहा। महाकायाय नमः स्वाहा। महानन्याय नमः स्वाहा। विश्वक्षणाय नमः स्वाहा। ओम हरये नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा। तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा। ओम हयर्षाय नमः स्वाहा। सहायाय नमः स्वाहा। कर्मकालविदाय नमः स्वाहा। विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। ओम समुद्राय नमः। ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा। उतासनसहासाय नमः स्वाहा। उतासनसहायाय नमः स्वाहा। ओम प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा। उतासनाय नमः
स्वाहा उग्रते।

0: तेजसे नमः स्वाहा, महातेजसे नमः स्वाहा, जन्यायः नमः स्वाहा, बीजकालविदे नमः स्वाहा, ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धये नमः स्वाहा, सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा, ओम सिखिने नमः स्वाहा, ओम मुनिने नमः स्वाहा, जटिने नमः स्वाहा, जलिने नमः स्वाहा, ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा, मूर्धजाय नमः स्वाहा, ओम बलिने नमः स्वाहा, बैनविने नमः स्वाहा, ओम पणविने नमः स्वाहा, ओम तालिने नमः स्वाहा, ओम खलिने नमः, ओम कलंक कटाय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा, गुणबुद्धये नमः स्वाहा, ललाय नमः स्वाहा, ओम अगमाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम विश्वाहवे नमः स्वाहा, ओम विभागाय नमः स्वाहा, ओम सर्वगाय नमः स्वाहा, अमुखाय नमः स्वाहा, ओम विमोचनाय नमः स्वाहा, सुरासुराय नमः स्वाहा, हिरण्यकपूजताय नमः स्वाहा, मेधजताय नमः स्वाहा, बलचारिणे नमः स्वाहा, महिचारिणे नमः स्वाहा, ओम श्रुताय नमः स्वाहा, ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा, सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा, सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा, व्यालरूपाय नमः स्वाहा, गुहावासिने नमः स्वाहा, गुहाय नमः स्वाहा, मालिने नमः स्वाहा, तरंगविदे नमः स्वाहा, त्रिदशाय नमः स्वाहा, त्रिकालरहिते नमः स्वाहा, कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा, असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा, ओम युधि शत्रु विनाशाय नमः स्वाहा, सांग प्रसादाय नमः स्वाहा, दुर्वासने नमः स्वाहा, सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा, प्रस्कंदाय नमः स्वाहा, यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा, अतुल्याय नमः स्वाहा, यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा, सर्वसवाय नमः स्वाहा, सर्वचारिणे नमः स्वाहा, दुर्वासे नमः स्वाहा, ओम वासराय नमः स्वाहा, अमराय नमः स्वाहा, ओम हेमाय नमः स्वाहा, ओम हेमकाराय नमः स्वाहा, निष्कमाय नमः स्वाहा, ओम सर्वधारिणे नमः स्वाहा, धरोदत्ताय नमः स्वाहा, लोहिताक्षाय नमः स्वाहा, ओमाक्षाय नमः स्वाहा, विजयाक्षाय नमः स्वाहा, विशारदाय नमः स्वाहा, सहस्राय नमः स्वाहा, ओनिग्राय नमः स्वाहा, ओमकर्त्रे नमः, ओम सर्वपरिचरणिषाय नमः स्वाहा, सर्परिचिर निवासानाय नमः स्वाहा, मुख्याय नमः स्वाहा, अमुख्याय नमः स्वाहा, ओम देहाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, सर्वकामदाय नमः स्वाहा, सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा, ओम सुबलाशाय नमः स्वाहा, ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा, सर्वकामवराय नमः स्वाहा, ओम सर्वकाय नमः स्वाहा, सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा, आकाशनिवासाय नमः स्वाहा, निपातिने नमः स्वाहा, अवसाय नमः स्वाहा, ओम खगाय नमः स्वाहा, ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा, अंशवे नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा, बहुरश्मे नमः स्वाहा, ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा, ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा, महावेगाय नमः स्वाहा, मनोवेगाय नमः स्वाहा, निशाचराय नमः स्वाहा, सर्ववासिने नमः स्वाहा, श्रेयवासिने नमः स्वाहा, उपदेशकराय नमः स्वाहा, ओम अकराय नमः स्वाहा, ओम मुनये नमः स्वाहा, आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा, ओम संभवाय नमः स्वाहा, संमग्नाय नमः स्वाहा, सहस्रदाय नमः स्वाहा, ओम पक्षिणे नमः स्वाहा, ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा, अधिशिप्ताय नमः स्वाहा, विषामतवे नमः स्वाहा, ओम उन्मादाय नमः स्वाहा, ओम मदनाय नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा, ओम असस्ताय नमः स्वाहा, ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा, ओम असये नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामाय नमः स्वाहा, ओम प्राचे नमः, ओम स्वाहा, ओम दक्षिणाय नमः, ओम स्वाहा, ओम वामनाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा, ओम महर्षये नमः स्वाहा, ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा, भिक्षवे नमः स्वाहा, भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा, विपणाय नमः स्वाहा, मृदवे नमः स्वाहा, अभयनाय नमः स्वाहा, विशाखाय नमः स्वाहा, षष्ठीभागाय नमः स्वाहा, ओम गवापतये नमः स्वाहा, भद्रहस्ताय नमः स्वाहा, ओम पिनाकाय नमः स्वाहा, सदाशिवाय नमः स्वाहा। नाउ इन 360
1: हो गए
0: जस्ट वी फिनिश
1: 700 भी है।
0: Yeah, 700. So this is good meditation. Keep continuing. Meditation in Kali Yuga. Om Viskambine Namaha, Swaha Chamustamanaya Namaha, Swaha Vrittavittakaraya Namaha, Swaha Talaya Namaha, Swaha Madave Namaha, Swaha Madukulojanaya Namaha, Swaha Vachaspataya Namaha, Swaha Vajasenaya Namaha, Swaha Nityamasira Pujitaya Namaha, Swaha Brahmacharine Namaha, Swaha Lokacharine Namaha, Swaha Sarvacharine Namaha, Swaha Vicharavide Namaha, Swaha Om Isanaya Namaha, Swaha Om Ishwaraya Namaha, Swaha Om Kalaya Namaha, Swaha Nishacharine Namaha, Swaha Pinakavritte Namaha, Swaha Om Nimittasthana Namaha, Swaha Om Nimittaya Namaha, Swaha Om Nandaye Namaha, Swaha Om Nandikaraya Namaha, Swaha Om Haraye Namaha, Swaha Om Nandishwaraya Namaha, Swaha Om Nandine Namaha, Swaha Om Nandaya Namaha, Swaha Nandigavardhanaya Namaha, Swaha Om Bhagaharine Namaha, Swaha Niyasrine Namaha, Swaha Om Kalaya Namaha, Swaha Om Brahmaya Namaha, Swaha Pitamahaya Namaha, Swaha Chaturmukhaya Namaha, Swaha Om Mahalingaya Namaha, Swaha Om Charulingaya Namaha, Swaha Om Lingadhyakshaya Namaha, Swaha Om Suradhyakshaya Namaha, Swaha Om Yogadhyakshaya Namaha, Swaha Yugavahaya Namaha, Swaha Vijadhyakshaya Namaha, Swaha Vijakarte Namaha, Swaha Adhatmanagatanaya Namaha, Swaha Balaya Namaha, Swaha Itihasaya Namaha, Swaha Sakalpaya Namaha, Swaha Gautamaya Namaha, Swaha Nisakaraya Namaha, Swaha Dambaya Namaha, Swaha Om Amandaya Namaha, Swaha Om Vedambhyaya Namaha, Swaha Om Vaishyaya Namaha, Swaha Vasakaraya Namaha, Swaha Kalaya Namaha, Swaha Om Lokarte Namaha, Swaha Om Pasupataya Namaha, Swaha Om Mahakarte Namaha, Swaha Om Anusadaya Namaha, Swaha Om Aksaraya Namaha, Swaha Om Paramaya Namaha, Swaha Om Paramaya Brahmane Namaha, Swaha Om Balavate Namaha, Swaha Om Sukraya Namaha, Swaha Om Nitya Namaha, Om Anitya Namaha, Om Suddhatmane Namaha, Swaha Om Suddhaya Namaha, Swaha Om Manyaya Namaha, Swaha Om Gatagataya Namaha, Swaha Om Bahuprasadaya Namaha, Swaha Om Suprasanaya Namaha, Swaha Om Darpanaya Namaha, Swaha Om Amitrajite Namaha, Swaha Om Vedakaraya Namaha, Swaha Om Manchakaraya Namaha, Swaha Om Vidisaya Namaha, Swaha Om Samardardanaya Namaha, Swaha Om Mahavinishaya Namaha, Swaha Om Mahagoraya Namaha, Swaha Om Basine Namaha, Swaha Om Karaya Namaha, Swaha Omnijalaya Namaha, Swaha Mahajalaya Namaha, Swaha Om Adi Vidumbaya Namaha, Swaha Om Hutaya Namaha, Swaha Om Vishaya Namaha, Swaha Vishaya Namaha, Swaha Sangraya Namaha, Om Nityavarshine Swaha Namaha, Om Dhumraketaya Namaha, Swaha Om Nilaparaya Namaha, Swaha Om Angulyadhyaya Namaha, Swaha Om Shobhanaya Namaha, Swaha Om Nivargaya Namaha, Swaha Swastidataya Namaha, ये तो है. Om Namaha, Om Swati Bhavaya Namaha, Om Bhagine Namaha, Om Bhagakaraya Namaha, Swaha Om Lagave Namaha, Swaha Usanaya Namaha, Swaha Mahankaraya Namaha, Swaha Mahagarapraya Namaha, Swaha Krishnavachaya Namaha, Swaha Subhanaya Namaha, Swaha Om Sarvadehinam Indriyaya Namaha, Swaha Om Mahapadakaya Namaha, Swaha Mahastaya Namaha, Swaha Mahakaya Namaha, Swaha Mahayasase Namaha, Swaha Mahagrabhumne Namaha, Swaha Mahamatraya Namaha, Swaha Mahanetraya Namaha, Swaha Nishalaya Namaha, Swaha Mahakantaya Namaha, Swaha Mahakarnaya Namaha, Swaha Mahishtaya Namaha, Swaha Hanave Namaha, Swaha Mahanave Namaha, Swaha Mahanasaya Namaha, Swaha Mahangampave Namaha, Swaha Mahagrivisaya Namaha, Smarsana Vaje Namaha, Mahabhakshaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Swaha Marurasakaya Namaha, Swaha Antaratmane Namaha, Swaha Mrigalaya Namaha, Swaha Om Lambanaya Namaha, Swaha Om Lambisthwasaya Namaha, Swaha Mahamayaya Namaha, Swaha Om Swaha Mayupadaniye Namaha, Swaha Payunidhaye Namaha, Swaha Mahadantaya Namaha, Swaha Mahadrashtaya Namaha, Swaha Mahajivaya Namaha, Swaha Om Mahamukhaya Namaha, Swaha Mahanakhaya Namaha, Swaha Mahasuraya Namaha, Swaha Mahakosaya Namaha, Swaha Mahajataya Namaha, Swaha Prasannaya Namaha, Swaha Om Prasadaya Namaha, Swaha Om Prapatyaya Namaha, Swaha Girisadanaya Namaha, Swaha Isnanaya Namaha, Swaha Om Ahasrayaya Namaha, Swaha Om Ajitaya Namaha, Swaha Mahamunaye Namaha, Swaha Vrichakaraya Namaha, Swaha Vrichakitave Namaha, Swaha Analaya Namaha, Swaha Bahibayanaya Namaha, Swaha Gandaline Namaha, Swaha Merudagne Namaha, Swaha Merudhamne Namaha, Swaha Devadi Namaha, Swaha Devadipataye Namaha, Swaha Atharvarshiyaye Namaha, Swaha Samavashiyaye Namaha, स्वाहा साक्ष सामिस्त्राय नमः स्वाहा ऋक् सहस्रा मितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजु पाद भुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा उमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा उसर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवे नमः स्वाहा ओम नाभय नमः स्वाहा नंदीकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम मकराय नमः स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः स्वाहा ओम सगणाय नमः स्वाहा ओम गुणकराय नमः स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः स्वाहा ओम भस्माय नमः स्वाहा भस्मधाराय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मसयाय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा अलोकाय नमः स्वाहा अमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचाय नमः स्वाहा भूत निविशिताय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदिते नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनल्लघाय नमः स्वाहा बन्दनाय नमः स्वाहा बन्दकर्ते नमः स्वाहा सुबन्धमीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुराग्रिणी नमः स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओम संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणभिवायिने नमः स्वाहा सर्व काम गुणाय नमः स्वाहा सर्व काम गुण बहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चंद्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशांताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्य संजने नमः स्वाहा ओम ए नाम स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा कुरुभूताय नमः स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा ओम सर्वासाय नमः स्वाहा धर्मचारिणी नमः स्वाहा सर्वेषु प्राणिनां पतये नमः स्वाहा ओम देवादेवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्न वेद नमः स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम भौविद्याय नमः स्वाहा ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम वकिलाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम अलोलाय नमः स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा ओम महाजत्रे नमः स्वाहा ओम अलोचाय नमः स्वाहा महासौदाय नमः स्वाहा सिद्धकारिणी नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा वरदकिने नमः स्वाहा वाणिज्याय नमः स्वाहा वकिलाय नमः स्वाहा बहुप्रदाय नमः स्वाहा बहुविद्याय नमः स्वाहा सिद्धार्थकारिणी नमः स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा सिंहनादनाय नमः स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा सिंहगाय नमः स्वाहा सिंहवाहनाय नमः स्वाहा प्रभात्मने नमः स्वाहा जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा लोकहिताय नमः स्वाहा अमतरवे नमः स्वाहा सारंजाय नमः स्वाहा नवसक्रांगाय नमः स्वाहा केतुमालिने नमः स्वाहा सवानाय नमः स्वाहा भूतालयाय नमः स्वाहा भूतपतये नमः स्वाहा अहोरात्राय नमः स्वाहा अग्निदिताय नमः स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा विभवे नमः स्वाहा भवनाय नमः स्वाहा अमुगाय नमः स्वाहा संगताय नमः स्वाहा अश्वाय नमः स्वाहा भोजनाय नमः स्वाहा प्राणधाराय नमः स्वाहा घृतमिदे नमः स्वाहा अमिताय नमः स्वाहा दक्षाय नमः स्वाहा सत्कृताय नमः स्वाहा युगधापिताय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा गोपतये नमः ओम गामाय नमः स्वाहा गोमवर्चनाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा प्रवेशिनाय नमः स्वाहा गुहालपालाय नमः स्वाहा प्रकिष्टारे नमः स्वाहा महर्षाय नमः स्वाहा जितकामाय नमः स्वाहा जितेन्द्राय नमः स्वाहा ओम गंधधराय नमः स्वाहा उषताय नमः स्वाहा 720
2: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्सक्ताय नमः स्वाहा ओम रतये नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनचार्ये नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम वृद्धाय नमः स्वाहा अतिवृद्धाय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा देवी सुपर्णे नमः स्वाहा असडाय नमः स्वाहा ओम सुपसाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणि नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओ अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः, स्वाहा महारथाय नमः, स्वाहा निर्विजयाय नमः, स्वाहा ओम जीवनाय नमः, स्वाहा ओम मंत्राय नमः, स्वाहा ओम मंचाय नमः, स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः, स्वाहा बहुकर्णनाय नमः, स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः, रत्नंगाय नमः, स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः, स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः, स्वाहा ओम मूलाय नमः, स्वाहा ओम विशलाय नमः, स्वाहा ओम अमृताय नमः, स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः, स्वाहा ओम तपोनिधे नमः, स्वाहा ओम आरोहराय नमः, स्वाहा आधिरोहाय नमः, स्वाहा शीलधारिणे नमः, स्वाहा ओम महायसने नमः, स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम योगाय नमः, स्वाहा ओम योगकराय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम युगरूपाय नमः, स्वाहा ओम महारूपाय नमः, ओम स्वाहा ओम महानगनाय नमः, स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः, स्वाहा ओम बधाय नमः, ओम स्वाहा महानागगणाय नमः, स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः, स्वाहा ओम मातपदाय नमः, स्वाहा ओम पादाय नमः, स्वाहा ओम पंडिताय नमः, स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः, स्वाहा बहुमालाय नमः, स्वाहा महामालाय नमः, स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः, स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः, स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः, स्वाहा ओम सफलदयाय नमः, स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः, स्वाहा विष्णवे नमः, स्वाहा मणिसिद्धाय नमः, स्वाहा ओम जटाधराय नमः, स्वाहा ओम बिंदवे नमः, स्वाहा ओम विसर्गाय नमः, स्वाहा सुमुखाय नमः, स्वाहा ओम सराय नमः, स्वाहा ओम सारुभूताय नमः, स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः, स्वाहा ओम सहायाय नमः, स्वाहा निवेदनाय नमः, स्वाहा सुखाजाताय नमः, स्वाहा सुगंधाराय नमः, स्वाहा महाधनुषे नमः, स्वाहा गंधपालिने नमः, स्वाहा ओम शंकाय नमः, स्वाहा उत्थानाय नमः, स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः, स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः, स्वाहा ओम सकलाय नमः, स्वाहा सर्वलोचनाय नमः, स्वाहा तलस्थालाय नमः, स्वाहा करस्थालिने नमः, स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः, स्वाहा ओम महते नमः, स्वाहा ओम छत्राय नमः, स्वाहा सुछत्राय नमः, स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः, स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः, स्वाहा ओम मुन्नाय नमः, स्वाहा ओम विरूपाय नमः, स्वाहा ओम विकृताय नमः, स्वाहा ओम दंडिने नमः, स्वाहा ओम कुन्निने नमः, स्वाहा विकुर्णवणाय नमः, स्वाहा अरिहेच्छाय नमः, ओम कुंभाय नमः, स्वाहा ओम ककुभाय नमः, स्वाहा ओम वज्रिणे नमः, स्वाहा ओम शतविजाय नमः, स्वाहा सहस्रपादे नमः, स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः, स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः, स्वाहा ओम गुरवे नमः, स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः, स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः, स्वाहा ओम शरण्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः, स्वाहा ओम पैत्राय नमः, स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः, स्वाहा कनिष्ठाय नमः, स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः, स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः, स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः, स्वाहा पद्मगर्भाय नमः, स्वाहा महागर्भाय नमः, स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः, स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः, स्वाहा गवस्ते नमः, स्वाहा ब्रह्मकृते नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ब्रह्माविदे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः, स्वाहा ओम गतये नमः, स्वाहा अनंत रूपाय नमः, स्वाहा ओम नैकात्मने नमः, स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः, स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः, स्वाहा उपस्पदे नमः, स्वाहा बातहराय नमः, स्वाहा मनोजवाय नमः, स्वाहा चंदनीये नमः, स्वाहा चंदनीने नमः, स्वाहा पद्मनालग्राय नमः, स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः, स्वाहा ओम नराय नमः, स्वाहा कणिकार महाश्रगविणे नमः, स्वाहा ओम नीलमौलये नमः, स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः, स्वाहा उमापतये नमः, स्वाहा उमाकांताय नमः, स्वाहा जाह्वविभृते नमः, स्वाहा उमाधवाय नमः, स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः, स्वाहा ओम वरदाय नमः, स्वाहा ओम वरेण्याय नमः, स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः, स्वाहा महाप्रसादाय नमः, स्वाहा दमनाय नमः, स्वाहा शत्रुघ्ने नमः, स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः, स्वाहा प्रीतात्मने नमः, स्वाहा परमात्मने नमः, स्वाहा प्रयात्मने नमः, स्वाहा प्रधानधृते नमः, स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः, स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः, स्वाहा धर्मसाधने नमः, ओम धर्मसाधारणोपराय जन्नमः, स्वाहा चराचरात्मने नमः, स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः, स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः, स्वाहा शारदस्याय नमः, स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः, स्वाहा विश्वदवसे नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शुंगुपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनाराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओ वणशिव्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सती नमः स्वाहा ओम असती नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अभोक्ताय नमः स्वाहा पितृ नमः स्वाहा मातृ नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इराय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा
1: जी
0: ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगप्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राजराजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा विरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव। शिव जी के ग्यारह, हाँ

0: 1008
1: names. तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं, बचा है बचा, वेट वेट है, हाँ. तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर, ओके ओम.

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो ये है नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसी बलमहि देहि, मन्युमसी मन्युमहि देहि, सहोसी सहमहि देहि, तेजोसी तेजोमहि देहि, वीर्यमसी वीर्यमहि देहि, ओजोसी ओजोमहि देहि, मन्युमसी मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गुं शांति शांति रापा शांति रो सधाया।

0: शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद दकम भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चंदनं तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: धन्यवाद। Take your finger and like this and make tilak, okay? They should dip their something.
0: We put a little ghee.

तम सतगुरु तम नमाम्यम। अलकपुरी जी महादेव की, देवाजी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सब

from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagda keval bhasa ka hai aur kuch bhi nahi. Aap Ramayan Gita padhoge, to Musliman shayad nahi samjhenge, svikar nahi karenge. Aur agar wo Quran Urdu padhenge, to aap svikar nahi karoge, kyun aap nahi samajh rahe ho. Baat wahi hai. Achhi baat रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारे काकी है. आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो, है काका काकी माजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है क्या? नहीं, एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है. नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो. हाँ, हमारे स्कूल में जानो है. उन्होंने ठा तो है को नहीं. बाप जी, मैं टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे. नौकरी पड़ी खाडा रे माए. मनुष्य बनाओ बच्चे को. आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, ने अंग्रेजी पढ़ी रहा रो तो फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं रखे. इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है. तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है. क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा. संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार. आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो. नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा. न केवल अंग्रेजी में भाषण दो कि नहीं, मैं हिंदी में बोलू. बाप जी बोलो आदि कचरी है. हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट. अरे बाबा जी स्टेट जाओ. अरे की स्टेट में जाऊं? गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं? हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी. अरे पूरी सीखी नहीं. बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और
रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है टैगोर साहब।

बंगाली बोल रहे हैं तो टागोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टागोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टागोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी। वो चार शब्द नहीं कियो और टागोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं रेशी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है कि बणियाणी रे नी ने रेशी सुथारी आ होनारी परिजाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेशी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृत के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wish the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो कहे कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी, सही बात है कि नहीं। इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट divine who gave you the knowledge, then is the birthday of Bhagwan Vedvyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called a living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म, वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड, इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, इज हर धर्म, वो सनातन धर्म है। ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट, इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट, एक मां बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है,
वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में, स्कूल के मास्टर आपके गुरु है। इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन। द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयरफॉर द गुरु पूर्णिमा हैज ग्रेट मीनिंग्स देन अदर एनी फेस्टिवल्स। हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महाऋषि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही। इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल। गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा। और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, यू केम ऑल, वेलकम। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत। तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा। कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है। पर माँ कोई नाग देवता बैठा वे तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जो ध्यान राख जो भाई सरफ अरफ आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है। भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स वेन एवर यू लाइक, यू कैन पुट ऑन योर टेलीविजन एंड यू कैन सी और हियर द भजन। बोल सर।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun. An eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए. गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है. अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा. लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम. जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है. इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए. ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है. ये तुम्हारे

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has come.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.

0: जय तलवार बजे।
1: यू कैन ट्राई मैनी थिंग्स अनलेस यू हैव नॉट कंट्रोल्ड चित्त वृत्तिस एंड दैट कैन ओनली बी थ्रू गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। Therefore, Gurudev bina karj nai share, without the mercy, the blessing of the Gurudev, your all efforts will be meaningless. No one can help you. Be sure, no one can help you. Only you can help yourself to purify your mind. Because only two knows, God and yourself. For God, it doesn't matter. Why should he bother? God can

0: Touched by the strength of yoga, these people could hardly wait for the evening to see and hear Swamiji.
1: कहाँ तितिक्षा की, कहाँ सहन करने की शक्ति है? अरे थे कट ध्यान करियो, थारा ध्यान तो पगों में है तो कि हमारा पग दुखे। हमें तो उस निराकार के अंदर जाना है, चिदाकाश के अंदर यात्रा करनी है, हमें तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है। कहाँ? हमारे स्वयं चिदाकाश के अंदर। और हमारा चिदाकाश कितना बड़ा है? हमारा चिदाकाश इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा, जितना ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है।
0: To the delight of many, Swamiji conducted the morning sadhana. This morning, the subject is meditation.
1: The liberation doesn't come through some postures of the body. The liberation will come through the knowledge and Guru Kripa.
2: Everything what's happening, I'm beyond this. Be the witness of your body. Be the observer of your thoughts. And feel that I am relaxed. I am the bliss. I am the bliss.
0: Every evening, spiritual thirst was quenched by the words of the Guru.
1: O Swayambhu Shiv, वचैतन्य शिव, जिनके द्वारा सूर्य चंद्र तारे ग्रह दृश्य दृश्यमान शक्तियां गुण तत्व आदि की उत्पत्ति हुई, और वही चैतन्य शिव स्वयंभो इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर विद्यमान है।
0: A new morning, a new yoga technique. Today, on schedule, it is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental functions.
2: Try to gaze on the flame carefully. Try to become one with the flame.
0: Swamiji has found the time to visit a school for children with hearing and speaking problems, deaf and mute children. The arrival of a yogi always offers something that can help.
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं, और साथ ही साथ वो वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्व, तो उसमें कुंभक के द्वारा प्राणायाम, विशेष कुंभक होती है। उस कुंभक से क्या होता है कि कुछ नाड़ियों का यहाँ खुल जाना होगा, सेंटर जो केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है।
0: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work and satsang.
1: और उस हृदय काश के अंदर, कमल के अंदर में एक छोटी सी गुफा है, और उस गुफा के वो अंदर वो जो क्लोज, इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है, विधीन उसके अंदर में एक स्पेस जो है गुफा, और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है, वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है।
0: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to

0: स्वामी जी ऑन स्पॉट।
1: राम भजन रोचो घड़ियो, मन सतगुरु सही समझा, मन मारा ज्ञानी गुरु एड़ा मिलिया, मन मारा सतगुरु।

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swami ji, Mahatma ji, Maharaj sahab to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain aisa bataya gaya. Par unka sandesh hamare beech mein hai, aapke beech mein hai. Lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile, aatma ko shanti mile, sadbhav ka vatavaran kayam ho. Ek lamba jeevan unhone bitaya aur kis prakar se ve समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए. उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है.
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं. गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की.
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders and beyond everything.

0: विश्व गुरुजी परमहंस महेश्वरानंद गुरुदेवम
1: की जय
0: श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय
0: होली गुरुजी गुरुदेवम
1: की जय
0: श्री देवेश्वर महादेवम
1: की जय
0: श्री अलकपुरीश महादेवम
1: की जय

0: अम्बले श्रीदेव प्रेम भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय श्री स्वामी माधवानंदजी भगवान की जय
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय श्री पारहंस।

0: श्रीदीप नारायण
1: भगवान की जय।
0: श्री अलख पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देव पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी की जय।

ओम श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री अलक पुरुष महादेव की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी।

0: ओम श्री नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री अला पुरुषा महादेवा
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेवा
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी सत गुरुदेव जी की जय। ओम श्री अला कपूर जी सदा पिता परम्परा की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का की जय, गुरु नानक जी महाराजा की जय, प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव जी महाराज की जय। परम स्वामी महाश्वरान जी गुरुदेव की जय।